थो रेडियो नेपाल ख नेपाल बासे समाचार जीव बेसपा खिजना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्स सब पिकु द दिल्ला थो एकादशी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपाली बजायात अन्तर्राष्ट्रियकरण यात थ तयार दु धैतिक दु नेपाल प्लाइवुड उत्पादक सङ्घ नाप थिति उत्पादक या प्रतिनिधि नाप ख लना दिसे वेक्ल थते धैतिको ख नेपाल गलिचा उत्पादक सङ्घ नाय बलराम गुरुङ अमेरिका नुगु नियम देखु गुली थपिन्त थाकुको नेतना दिल नेपाल पश्चिमा उद्योग सङ्घ नाय धनप्रसाद लामिछाने गुई फैचा लोही त थाकुगुली पश्मिना उद्योगे पङ्ग जुगु नेतना दिल देवपतिक असार शुक्र एकादशी खुनु छे छे तुलसी पिना पेला तक पूजा यागु ज्या निहागु दु सनातन वैदिक परम्परा कथ तुलसी या त विष्णु या ची कथ नालाका या त गुदु थौ सुत निसे पुई जसी नाप सुनिग या पेम नारायण देगले मोमो भक्त जन्पी पूजा याना चुङ्गुदु परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी इनेगु झोले खनेदुगु पङ्ग जेङ्केगु धागुदु मन्त्रालय मिगत सिंह दरबारे गोसागोको पत्रकार सम्मेलन मन्त्रालय प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल छेत्री थोया त याक्न जेङ्केगु नेतना दिल पत्रकार सम्मेलन प्रवक्ता छेत्री दक्षिण पूर्वी एसियाली दे कम्बोडिया म्यानमार लाओस ओ थाइल्यान्डिया अनलाइन स्क्याम सेन्टरे ठगे जुपी च्यास व खुइम नेपाली या त उद्धार यागु नेतना दिल सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना बाजुरा या बढी मालिका थथे टेलिफोन व इन्टरनेट सुविधा वि त उज ब्यादिगु दु मिग मन्त्रालय जुगु सलस मन् क्रिया उज लिपा नेपाल टेलिकम साउन्दुने टेलिफोन सेवा व इन्टरनेट अन थेङ्केको कुत यागु धागुदु गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नेपाल भारत सीमावर्ती लाग्या चुनाचु पी नेपामी पिन्त पङ्ग जुया चुङ्गुली उकिया त जेङ्के त सरकार र ज्या एना चुङ्गु नेतना दिगु दु सङ्घीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समिति मिग जुगु सलस वेक्ल थथे धाइदिगु ख मु ज्या सशस्त्र प्रहरी बल या महानिर्देशक नारायण दत्त पौडेल डिजिटल सीमा व्यवस्थापन यागु नेतना दिल मु ज्या नेपाल प्रहरी महानिर्देशक तानबहादुर कार्की सीमा या सुरक्षा पाचे नक्सा यागु नेतना दिल नेपाल गणतन्त्र कोरिया दी कृषि व कानुनी सूचना सेवा त ब्याक त निगो धल या लाचे त अगुदु कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहकुनी कोइका पाखे नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधि सजुगु छिन्छगु फुटी च्यागु मिलियन अमेरिकी डलर या लाचे त अगु दु बागमती खुसी सिथे अव्यवस्थित बसोबास चिके धुङका अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति थुकिया त व्यवस्थित यागु कुत यागुदो समिति या कार्यकारी समिति नाय डाक्टर अनन्द सिंह भाट अन स्वा केव देखेगु कासा ख्य देखेगु धैदिगुदु बल्खु वंशीघाट थापाथली गैरी गाउँ सिनामङ्गल व शङ्खमुले सुचपुज याथङ्क गुण वेक्ल कना दिल दे दस अगस्त 9 तारिखे विश्वनिङ्क विश्व आदिवासी दिवस तिथि ज्याजो यासे तजिक हनाउ याचङ्गुदु नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल नेफिन या गोसला थुसी सुनिक गु विश्व आदिवासी दिवस हनीको नीति तयारी या नाचुङ्गुदु विश्व आदिवासी दिवस कुनु आदिवासी जनजाति परम्परागत सांस्कृतिक व महसिका पिजोइ गु तिथि झाँकी या बोझा यासे र्याली व सांस्कृतिक ज्याजो याइगु जोगुदु महासङ्घ नाय निमा लामा ग्याल्मो थुसी अगस्त 9 साउन 24 गते चक दौली सुन यादव सुया अपो आदिवासी जनजाति त हया अधिकार कहेको कथा आन्दोलन या रूप दिवस हने तिनागु थाइदिल महासङ्घ्या मु छ्यान्जे विमल सारु मगर थुसी या विश्व आदिवासी दिवस या त महासङ्घ विश्व कथ हनेगु ल्याख चक दौली हने तिनागु ख कना दिल महासङ्घ्या कथ सुनिगले छक थ्यमथ्य निगो लक सोया अपो आदिवासी त चुना चुङ्गु दुसा दिवस या दि खुनु सुन यादो निसे पिदो बोती याकेगु महासङ्घ्या तयारी दुगु नेतना दिल
अथे मुज्या मासङ आबद्ध नेवा दे दुबुनाय रश्मिला प्रजापति नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनी जनाय लक्की चौधरी पिनिगु बोटी लिसे वेकअप से सुजा ब्यादिल संयुक्त राष्ट्रसँग सन् 1994 दे 10 अगस्त 9 या दिन या त अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस या रूपे हनेगु घोषणा यागु ख येल महानगरपालिका वडालिया तिने एआई क्लोनिङ सेवा ह्याकुगु दो तिन वडा ज्याकुति नागरिक गुनासो सम्बन्धन यागु वडाया सेवा बारे जानकारी बिगु ल्याख आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई प्रविधि सेवा ह्याकुगु ख तिन वडाया ज्याकु पाखिन छगु पत्रकार सम्मेलन यासे नि पेगौ हे सेवा बिगु ल्याख एआई क्लोनिङ सेवा ह्याकुगु उडा अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जन थाइदिगु ख ए महानगरपालिका 27 वडा लागु महाबुद्ध महाविहारे मुना श्रावण 13 गते बुधबार बुद्ध या शोभायात्रा व पञ्चदान ज्याजो याइगु जुगुदो महाबौद्ध टोल विकास व्यवस्थापन समिति ए महानगरपालिका 27 वडा लिसे थिति खलपुच या गोसलया उगु पञ्चदान ज्याजो जुइतेङ्गु ख 27 वडा या वडा अध्यक्ष योगेश खड्की उगु ज्याजो पुलाङ्गु बौद्ध परम्परा यात न्ह्यने हेगु आजु तया यातिनागु ख कुलादिल बुधबार सुथे च्यात त्या इले महाबुद्ध महाविहारे पञ्चदान ज्याजो जुइगुली चे न्याम साके स्थबीर थापा दिपङ्गर तथागत बुद्ध व जीवित गणेश व भैरपिनीगु भोती दैगु थागुदो अथे पञ्चदान ज्याजो लिपानिनेसिया चिन्हिता त्या इले शोभायात्रा ज्याजो तयातगुदो गुरुपुनि यालसत्यालाका सम्यक दान या स्मरण थुकुथा ज्याजो तयातगु ख शोभायात्रा महाबुद्ध बहाल न्याका अस त्यर कोथुदुवा इनबहा कमलाछी पटाहिदी जुया असने दिपङ्कर दिअपी बोजिया याइगु जुगुदु महाबौद्ध टोल विकास व्यवस्थापन समिति नाय दिपकलाल प्रधान सक्ल वडावासी पिन्त थुगु ज्याजले बोधिकिया दिद इनाब यनादिगुदु घुस्ता लिसे ए महानगरपालिका 30 लेखा अधिकृत उद्धव भट्टराया त गिरफ्तार यागदु भट्टराया त अख्तियार अनुसन्धान आयोग पुचल नि छदो तका दा घुस लिसे गिरफ्तार यागु ख स्थायी लेखा नम्बर बन्द यागु नीति वडा ज्याकुति पाखे बिमागु सिफारिस नीति दुःख हैरान बिहा सेवाग्री यागु घुस कागु धैगु सूचय आधारे अख्तियार पुचल लेखा अधिकृत भट्टराया त घुस क्यागु अवस्था नियन्त्रण कागु ख अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपने कथ पट्रया त थप अनुसन्धान जुया चङ्गुदु खुगु लाख खुई न्यादो तका नगद लिसे विराटनगर स्थल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति मोरङ या ज्याकुती प्रमुख मिक्सार तामाङ या त गिरफ्तार यागुदु तामाङ नेपाल सरकार उपसचिव ख साउन 3 गते बुद्ध यर विमाने विराटनगर पाखे ए वेगु झोले गिरफ्तारी लागु ख तामाङ या त गिरफ्तार यागु धल प्रहरी शुक्रबार चक सार्वजनिक यागु ख दरबार मार्गे चङ्गु ग्यालेरी 108 सुनिग या ऐतिहासिक बस्ती व जात्रा सम्बन्धित चित्रकला बोज्या यागुदो कलाकार प्रदीप कुमार भट्टाचार्य उत्सव इन द रिडम अफ द जात्रा नाम याको चित्रकला बोज्या यागु ख साउन 8 गते निसे लक्षितक न्यायगो चित्रकला बोज्या सुनिगा थिति ऐतिहासिक बस्ती त लिसे सुनिगा दक्ले थाहाकगु बुङ्गदया जात्रा जनबादया जात्रा बुङ्गदया भोटो जात्रा मध्यपुर थिमिया फुई सिंह जात्रा लिसे मेमिगुन ऐतिहासिक जात्रा चित्रकला बोज्या जुइगु ग्यालेरी 108 जानकारी बिगु ख कलाकार ब्रुजाचार्य चित्रकला जात्रा जक मुखुसे जात्रा थोइगो धिमे बाजया स हुलमिलिया स मे रोङ भक्त तेगु श्रद्धा व सटके खने दैगु जात्रा ऊर्जा यात्रा क्यानभासे किगु कुत याना दिगु धाइदिल सांस्कृतिकको पर्यटकै नगरी खोपे वङ्गु आर्थिक दे निगु लाक्सुया अप विदेशी पर्यटक दुहाँ वगु दु खोप नगरपालिका पर्यटन सूचना व सेवा केन्द्र कथमा वङ्गु आर्थिक द 2082-83 मुक्क निगु लाक नि छदो गुस व गुई छम पर्यटक दुहाँ वगु ख केन्द्र तथ्याङ्क कथन थोसुयान ह वङ्गु आर्थिक द 2081-82 निगुलाक पी पेदो मल्याक पर्यटक खोपे दुहाँ ओगु
खुङ्गु आर्थिक दे सार क्लासिलिसे मेमिगु देशे वो पि पर्यटक ल्या न मो खनि दुगु धागुदु। किपु नगरपालिका दसवटा या वडा अध्यक्ष लिसे किपु नगरपालिका पर्यटन सम्पदा विभाग कोची नरेश महर्जन या मा धनमाया महर्जन महन्त विक्रम सम्म 2006 जन्म जुयादीमा धनमाया ने नेद या वैश्य वास यागु झोले साउन 6 बुधबार सनिलिया न्याता इजुया चिन्सुङ्गु मिनेटे वास यागु झोले मधुगु वेक भ्या बिन्दु महर्जन सुच व्याधिको ख धनमाया मर्जन जलसिया सम्बन्धी लोचकया वास यागु झोले मधुगु ख। संयुक्त राष्ट्रसँग मध्य पूर्व ल्वाफी दुगु दे या त हर्मुज जल मार्गे तकिना चो पिन्त उद्धार या त इन्नाप यागुदु दोलुन्दो मुनु त ल जाजे तकिना चोङ्गुली उम्त उद्धार या त इन्नाप यागु ख। इरान समर्थित हुती विद्रोही रेड सीले चिक ट्याङ्कर या त आकुन यादुङ्का संयुक्त राज्य अमेरिका शुक्रबार इरानले नुगु आकुन यादुङ्का वेकपी तकिना चोङ्गु ख। थौँ दे या हिमाली ओ पहाडी लागे पच्चा थासे ओ बागमती गण्डकी लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई या मो थासे मध्य प्रदेश ओ कोशी प्रदेश या तराई लागे छग्नीको थासे वा वैगु तहागुदु गण्डकी लुम्बिनी ओ कर्णाली प्रदेश या पहाडी लागे छग्नीको थासे वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तहागुदु सोनिगले नि पेगो दुनी नि च्यागु डिग्री सेल्सियस या क्वाज लुगु दुधासा थौँ मिग शिव अप तानैगु दुकुमा यागुदु सोनिगले सुते न्याता इजुया चिन खुगु मिनेटे लुगु सूर्य नेता इजुया सुङ्गु मिनेटे भी नेपाल भाषे बुखको चाल शुभ।

0: तर कोसिस गर्छु। हस् दिदी, ल म गए पनि। जेलर साहेब, के म युगेशलाई भेट्न सक्छु?
1: युगेशको तपाईँको
0: दिदी?
1: ओ माय गॉड, युगेश त
0: किन, के भयो युगेशलाई?
1: युगेश अहिले हस्पिटलमा छ।
0: किन, किन र?
1: उसले आत्महत्या।
0: आत्महत्या रे?
1: बरु छिटो जाउँ।
0: हस् जाउँ जाउँ।

आजु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रिढाङनी दाढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ लुइथेन खाद्य स्वच्छता ब्लोन निसा मेहताला भङ लिचा खोफ कादे पिन्बा मोक्युल साजदार घेन्दुन गाविसे नेपाल थेन लाख सोम तोङ ब्रे ग्यार्जा निसे निस चुइ गिक अमेरिकी डलर आकिन्बा ताबामुला चुटाङ्गा गाविसे नेपाल से दखाबा रारी किन्बा रोग्याम झिक्ना लाबा ताबामुला गाविसे ब्लोन मेहतादा पुइबा चिठी ग्याम जाम्बुली लुई वाला धुरी ताबा काठुई लिचा नेपाल सरकार से थान्बा प्रस्ताव री चु निर्णय लाबा हिन्ला बिसी पाङबा मुला गाविसे दाते धोना नेपाल दा ग्यार्जा गाँसे गाँची मिली एन अमेरिकी डलर बिमा लानाला रो पिन्सी छिन्बा मुला सनम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से मधेस प्रदेशला गोरचुई पालिकारी सनमला नमुना एकीकृत गेखोर सेङबा ताबामुला संघ प्रदेश समन्वय सम्बन्धी ग्रेन स्तरीय चिसाङरी ब्लोन चौधरी से सनम अनुसन्धान प्रविधि हस्तान्तरण थेन प्राङ्गणिक खेतीदा प्राथमिकतारी थानबान सनम बोन कडेला बु धोना सेवा पिनबा लासी मधेस प्रदेशला गोर चुई पालिकादा नमुना गेखोरला रूपरी धामसी सेङबा बिसी सुङबा मुला प्रदेश सरकारला सिफारिस री प्रदेशला चुई पालिकारी चु गेखोर सेङबा सुङबान ब्लोन चौधरी से ठिम शोभा बिमा नोन सेङबा पक्षदान दरेम प्राथमिकता पिन्दोला बिसी सुङबा मुला सनम सामग्री कम्पनी लिमिटेड थेन साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन से ग्लुसी बाबा रासायनिक सार बिरगन्जला गोदामरी दोखाबा लिचा दाते पिन्बा गे तावन मुला सरकार से फेबा कोटारी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन से बाबा तोङ सोमचुई मेट्रिक टन डिएसपी मल मधेस गण्डकी थेन बागमती प्रदेशला लोलो लोलो जोङकादेरी पुइबा मुला बिसी कर्पोरेसनला क्षेत्रीय प्रबन्धक अमोज लामिछाने सुङबा मुला चुराङलासिन सानम सामग्री कम्पनी लिमिटेड से जी टु जी सरकार टु सरकार प्रक्रिया ग्याम बाबा गिक्सा हेमला चुई नि मेट्रिक टन डिएपी मल बिरगन्ज खाबा लिचा भैरवा पुइबा हिन्ला बिसी सनम सामग्री कम्पनीला बिरगन्ज प्रादेशिक घेजाङ ग्रेनपो दुर्गा प्रसाद पाण्डे से सुङबा मुला दुई से लामा बन्द ताबा काली गण्डकी कारिडोरला बागलुङ सडक घ्यालाम ब्रेरा लिछा सेङबा मुला बागलुङला जौमिनी नगरपालिका ब्रे छिस्ती ला चौरी खोला चाम गाम्री ग्यालाम तोर्ग्याम ताइबा ठुइचे लामा चु साउन घिक्ला कुनु हेन्से करिडोर अवरुद्ध ताबा मुबा दिङे दाङसे आषाढ शुक्ला एकादशीला कुनु दिङ दिम्री तुलसीला दोङ सुसी ला भ्ली दोना मोइबो लाबारी तिनी हेन्से ती बामुला तिनी स्यो हेन्सेन उपत्यका ला भ्ली नारायण बुढा नीलकण्ठ चतुर्बिहो नारायण स्थान छ्याम ह्युल नाङला नारायण लखाङ कादेरी मोइबो लाबारी लानन मिनी कादे राफरूप ताबामुला लाना नाम ताइबासे लामा बढी मालिका नगरपालिका कु सेला गाँड री पाल थेन दुइचे प्रभावित शोभा दिम थेमेदा सुरक्षित घ्लारी लेबा मुला ग्रेन जोखिम री मुबा सोम दिम्ला मेन्दो निचुई निथेन जोखिम री मुबा गोर चुई सोम दिम्ला मेन्दो ब्रेचुई सोम छ्याम प्रभावित थेत्माला मिनी कादे चाबा से क्वान ताङ कादे थेन स्यान्दो तोबा से कादे सुरक्षित घ्लारी भोरबा मुला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला प्रभावित थुम्री प्रहरी छ्याम सम्बन्धित निकाय से च्याबा गोबा लासी मिनिदा सतर्क ताबारी प्रशासन गेजाङ बाजुरा से मोइजेन लाबा मुला गुणस्तर ज्याबा आताबा चाबा से चुङबा बिसी मधेस प्रदेशला डुचुई नि छोङबोन कादे फेरुद्ध मुद्दा पिन्बा मुला खाद्य प्रविधि थेन गुण नियन्त्रण गेजाङ से नोर्दिङ 2082-83 री रूप्ची जाँच लामा चाबा सेरी गुणस्तर ज्याबा आताबा स्यापा लिचा सम्बन्धित जोङ ठिमखाङ थेन जोङ प्रशासन घेजाङरी खाद्य स्वच्छता थेन गुणस्तर ऐन 2081 अनुसार मुद्दा पिन्बा हिन्ला बिसी पाङबा मुला घेजाङ ग्रेनपो विमल कुमार दहाल चेसुङबा अनुसार बारा थेन पर्साला मेन्दो गाँचुई गिक मौतरीला मेन्दो निस सर्लाही थेन रौतहडला मेन्दो सोम थेन धनुषाला मेन्दो गिक उद्योगी छोङबोन विरुद्ध मुद्दा पिन बाखिन्ला
मकवानपुर प्रहरी से अनलाइन ठगीला घे लबा आरोपी मेन्दो सोम भारतीय मिनी थेन मेन्दो गिक नेपाली छ्याम मेन्दो ब्लिदा हेटोडा ग्याम चुङबा मुला जोङ प्रहरी घेजाङ मकवानपुर थेन ओडा प्रहरी घेजाङ हेटोडा ग्याम निभा प्रहरी टोली से हेटोडा उपमहानगर पालिका चुइला बास्तोला होटेल ग्याम थेनी कादेदा चुङबा खिन्ला ठगी लाबा कादे भारत बिहार राज्य पटना धिमताबा निचुई निस दिङला इन्द्रजित सरकार निचुई दिङला हर्षजित सरकार निचुई सोम दिङला एमन राजथेन बास्तोला होटेल सेङबा सोमचुई निस दिङला बास्तोला दा चुङबा मुला चुराङ लासिन न्युजरल्यान्ड थेन पोर्चुगल पुइसी पिन्ना भिवन टाङ्गा ठगी लाभा भियोग्री मेन्दो निदा तिलमा प्रहरी से चुङबा मुला याम्बु तार्केश्वर नगरपालिका चुई चिबा रूपनदेही धिमताबा गाँचुई घिग दिङला राजकुमार भण्डारी थेन याम्बु बुढा निलकण्ठ नगरपालिका चुइनी चिबा ओखल ढुङ्गा धिमताबा निचुई कु दिङला सुरेश घिमिरे दा प्रहरी से चुङबा हिला राजकुमार न्युजरल्यान्ड पुइसी पिन्ना विमान लाख सोमथेन सुरेशे पोर्चुगल पुइसी पिन्ना विमान लाख चुई भ्रे किन्सी यार्बा विवाह पीडित कादेला उजुरी खाबा लिचा याम्बु उपत्यका अपराध अनुसन्धान घेजाङ टेकु ग्याम निभा प्रहरी से राजकुमार दा याम्बुला तार्केश्वर नगरपालिका चुई ग्याम थेन सुरेश दा याम्बु महानगरपालिका निस ग्याम चुङबा खिन्ला मुगुला मुगम कार्मा रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर गा पुलु बजारी तिनी स्योरी दुइसे नाङमा मेन्दो गिक झाझा कोला शिवा मुला बिसाम थेला आबा आमा घाइते ताबा मुला दुइसे नाङसी पुलु बजारला गोर्ब्रे दिम कादे ग्रेन जोखिमरी राङबा मुला प्रहरी नायक उपरीक्षक विराज थापलियासे सुङबा अनुसार तिनी स्योरी बजार तोर ग्याम युङबा छ्याम ताइबा ढुइसे पेम्मा लामाला दिम नाङबा मुबा ओजान दिम्री भाडा किन्सी होटेल ला छोङ लाबान खाबा छाया नाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर चुई सोम तिरपाला नि सोमची नि दिङला जगन्नाथ बडुवाल ला निचुई निस दिङला मृङ सृजना बडुवाल घाइते ताबा मुला बिसाम थेला सोमचुई दिङला जा रमेश बडुवाल ढुइसे नाङसी सिबा मुला दाते ह्युलनाङरी मनसुनी लाबाला प्रभाव मुला बिसी मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से पाङबा मुला तिनी धिनेरी ह्युल्ला हिमाली थेन पहाडी थुम्ला लानन ग्लारी तिप्लिङला छ्याम नाम ताइबा मुबा बागमती गण्डकी लुम्बिनी थेन कर्णाली प्रदेशला पहाडी थुम्ला तिलै ग्लारी लानन नाम ताइबारी खाम्से दाम मुला बिसी महाशाखा से पाङबा मुला मकवानपुरला कैलाश गाउँपालिका कुवा पानी री ब्राग्याम पाप्सी मेन्दो गिक भिनी सिबा मुला जोङ प्रहरी गेजाङ मकवानपुरला प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफले से सुङबा अनुसार होजान ग्लाला ब्लिचिङा दिङला ईश्वर थिङ ब्राग्याम पाप्सी सिबा हिन्ला स्यान्स्युबान मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला

संबंधों का मजमा लगा हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने रकम अदायगी की खिदमात फराहम करने की इजाज़त याफ्ता तंजीमों के ज़रिए वालेट खोलने और उसे इस्तेमाल करने वालों की तफसीलात अपडेट करने के तरीक़ेकार में कौमी शनाख्ती कार्ड से मुतालिक बंदोबस्त को शामिल करते हुए अदायगी के निज़ाम से मुतालिक मरबूत हिदायत 2082 में 15वीं तरमीम की है। महकमा अदायगी निज़ाम के ज़रिए गुज़श्ता रोज़ जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक तरमीम शुदा बंदोबस्त के तहत अब से रकम की अदायगी की खिदमात फराहम करने की इजाज़त याफ्ता तंजीम ने नेपाली शहरियों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड के इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के मुताबिक की तफसीलात को यकीनी बनाते हुए वालेट खोलना होगा। उसी तरह तरमीम शुदा हिदायत के मुताबिक कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल नेपाली शहरियों ने 2083 साल सोच के आखिर तक अपने वालेट में कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अपडेट करना होगा, जबकि कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं लेने वाले सार्फिन को हर महीने शनाख्ती कार्ड हासिल करने के बाद अपडेट कराने की जानकारी देने का बंदोबस्त करना होगा। बैरून ममालिक में मुकीम नेपाली शहरियों ने बैरून मुल्क से ही ऑनलाइन के ज़रिए ज़रूरी कागजात की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट खोल सकने का बंदोबस्त को कायम ही रखा गया है। ऐसे सार्फिन ने नेपाल वापसी के 6 माह के अंदर कौमी शनाख्ती कार्ड की तफसीलात मुतल्लिका इदारे में अपडेट करना होगा। उसी तरह अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकने वाले माजूर और बेसहारा शहरियों के हक में कौमी शनाख्ती कार्ड या कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर के अलावा दिगर ज़रूरी कागजात की बुनियाद पर वॉलेट खोल सकने और कारोबार कर सकने का बंदोबस्त तरमीम शुदा हिदायत में किया गया है। तूदा की वजह से बंद हुआ कालीगंडी की कॉरिडोर के बागलुंग सड़क हिस्सा में 8 दिनों के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हुई है। बागलुंग के जैमिनी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 चश्ती वाक़े चौरी नदी के पुल के नज़दीक सड़क के बालाई हिस्से से गिरे तूदा की वजह से इसी सावन 1 गते से कॉरिडोर बंद था। ज़ेर ज़मीन आबी वसायल और आबपाशी तरक्याती डिवीज़न दफ्तर सरलाही के डिवीज़न इंचार्ज समेत 2 मुलाजमीन को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया है। कमीशन बराए बेजा इस्तेमाल इख्तियारात के बर्दीबाज दफ्तर से मुतहरिक टीम ने डिवीज़न इंचार्ज CDE अनुपमा ढकाल और मैकेनिकल अफसर 6 दर्जे के तुलाकान चौधरी को 7,50,000 रुपये रिश्वत समेत हिरासत में ले लिया है। कमीशन के मुताबिक बोरिंग और मोटर नस्ब करने का काम मुकम्मल होने के बाद अदायगी के दौरान सार्फिन को परेशान करके रिश्वत का मुतालबा करने की इतला और शिकायत की बुनियाद पर टीम को मुतहर्रिक किया गया था। गैर मियारी गजाई अशिया की पैदावार और फरोख्त करने के इल्ज़ाम में सूबा मध्यश के 62 सनतकारों और ताजरों के खिलाफ मुद्दा दायर किया गया है। गजाई तकनीकी और मियारात पर निगरानी रखने वाले दफ्तर के मुताबिक माली साल 2082-83 में जमा किए गए गजाई नमूनों में नुक्स पाए जाने के बाद मुतल्लिका ज़िली अदालत और ज़िली इंतज़ामिया दफ्तर में गजाई शफाफियत और मियारात जवाबित 2081 के मुताबिक मुद्दा दायर किया गया है। दफ्तर के इंचार्ज बिमल कुमार दाहल के मुताबिक ज़िला 12 और परसा की 51 मोहतरी के 7 सरलाही और रोहतक की 3-3 और धनुषा की 1 सनत और ताजरों के खिलाफ मुद्दा दायर किया गया है। रोलपा के सुनछारी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 सिरम वाके दवांग पहाड़ी पर आज दोपहर गिरे तूदा में दबकर बकरियां चराने गईं 2 खवातीन की मौत हो गई है, तो साथ ही तूदा में चौपाए भी दब जाने के शुबहात हैं। ज़िली पुलिस दफ्तर रोलपा के मुताबिक आज दोपहर तकरीबन 1 बजे दवांग पहाड़ी पर गाय और बकरियां चराने के दौरान बालाई हिस्से से अचानक गिरे तूदा में चौपाए दबने और चरवाहे भी रबते से बाहर होने की खबर सुन छहरी गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के सबक सदर महावीर राणा मगर ने इलाकाई पुलिस दफ्तर पोबांग को दी थी। पुलिस के मुताबिक तूदा की जद में आकर 2 खवातीन की मौत की तस्दीक कर ली गई है, तो तूदा में दबे चौपायों और माली और जानी नुकसान की तफसीलात जमा करने का काम किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दुश्वार जोग्राफियाई हालात और मुसलसल बारिश की वजह से इमदाद और तफसीलात जमा करने में मुश्किलात का सामना है। उसी तरह मुगु के मुगुम कारमारों गांव पालिका वार्ड नंबर 5 पुलू बाजार में आज सुबह तूदा गिरने से 1 बच्चे की मौत हो गई है, तो बच्चे के वालदेन जख्मी हुए हैं। तूदा की वजह से पुलू बाजार के दिगर 8 घरों को भी आला खतरा लाहिक हो गया है। DSP बिराज थपलिया के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 4 बजे बाजार के बालाई हिस्से से पत्थर समेत का तूदा गिरने से मकामी बाशिंदा पेमा लामा का घर मुकम्मल तौर पर दब गया। उसी घर में किराए पर होटल का पेशा करते आए छायानाथ रारा नगर पालिका वार्ड नंबर 13 तिरपा के 32 साल जगन्नाथ बड़वाल और उनकी बीवी 27 साल सृजना बड़वाल जख्मी हो गए हैं, जबकि उनका 3 साल बेटा रमेश बड़वाल की तूदा में दबकर मौत हो गई है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें खत्म।

ए रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल अभौगती सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2081 नेपालक अभौगतिक सांस्कृतिक सम्पदाक संरक्षण सम्वर्धन विकास तथा पुस्तान्तरणके कानूनी आधार प्रदान करबाक बात बतौलनि अछि। छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठी द्वारा आइ आयोजित 44वां छिन्नलता गीत पुरस्कार समर्पण समारोह में ओ विधेयक मार्फत विभिन्न जाति भाषा धर्म संस्कृति आ समुदायक मौलिक परंपरा ज्ञान शिल्प कला आ सांस्कृतिक अभिव्यक्तिक संरक्षण अभिलेखीकरण आ प्रवर्धन हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। संसदक अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा पर्यटन समिति में छलफल के क्रम में रहल विधेयक में सांस्कृतिक सम्पदाक व्यावसायिक प्रयोग करित काल संबंधित समुदाय के हित संरक्षण उल्लंघन में कानूनी कार्यवाही आ दंड जरिमानाक व्यवस्था कयल स्पष्ट कयलनि। विधेयक सँ लोपोन्मुख सम्पदाक संरक्षण सांस्कृतिक पहचान आ राष्ट्र एकताक सुदृढ़ीकरण यूनेस्कोक सूचीकरण के आधार निर्माण तथा सांस्कृतिक पर्यटन सृजनाक उद्योग आ रोजगारी प्रवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान पहुँचबाक अपेक्षा कयल ओ बतौलनि। छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठी नेपाली गीतकार तथा स्रष्टा रमौला देवी शाह छिन्नलताक सृजनात्मक योगदान आ स्मृति सँ जुड़ल गेल उल्लेख करैत ओ छिन्नलता गीत पुरस्कार सँ नेपाली गीत संगीत क्षेत्र में निरंतरता उच्च स्तर आ सृजनशीलता के प्रोत्साहन करैत आयल धारणा रखलनि। समारोह में सभामुख अर्याल वरिष्ठ हास्य व्यंग कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ गीतकार डॉक्टर नवराज लमसाल संगीतकार किरण करेल गायिका विमला राय आ सारिका घिमरे के पुरस्कार प्रदान कयने छलथि। कृषि वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी मधेश में कृषि तथा वनक अवस्था समस्या तथा समाधानक विषय में मधेश प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव संग आई छलफल कयलनि अछि। मुख्यमंत्री के निवास में भेल छलफल में कृषि उत्पादन बढ़ेबाक लेल तथा माटिक उर्वरा शक्ति कमजोर नहि होमय देबाक लेल प्रांगारिक मलक प्रयोग करबाक लेल किसान के प्रोत्साहन हेतु दुनू तहक सरकार सँ मिलकर काज करबाक सहमति भेल अछि। एकर संगे वनक स्थायी व्यवस्थापन चूड़ेक दोहन तथा पछिला समय में रासायनिक मलक अत्यधिक प्रयोगक कारणें माटिक उर्वरा शक्ति कमजोर भेला पर माटि अस्वस्थकर भेला सँ प्रांगारिक कंपोस्ट व हरियर मलक प्रयोग के प्रोत्साहन करबाक नीति के प्रभावकारी कारण करबाक विषय में छलफल भेल अछि। एकर संगे प्राकृतिक स्रोतक सदुपयोग कृषि तथा वन क्षेत्र में भेल समस्या तथा अवसर वन जंतुक प्रभाव विषय में छलफल भेल मधेश प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव जानकारी देलनि। नदीक व्यवस्थापन नीतिगत रूप में करबाक कृषिक उत्पादन बाजारीकरण सहितक विषय में संघीय मंत्री संग छलफल भेल ओ जानकारी देलनि। कृषि वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी मध्य प्रदेश में कृषिक संभावना व्यापक रहलाक कारणे कृषि क्षेत्रक समस्या समाधानक लेल संघ सरकार सब प्रकारक सहयोग करबाक लेल तैयार रहल बतौलनि। रासायनिक मलक अत्यधिक प्रयोग भेलाक कारणे माटि में नकारात्मक प्रभाव पड़ला सँ एहिके जोगेबाक लेल रासायनिक मलक विकल्प में जायब जरूरी रहल बतौलनि। छलफल में मध्य प्रदेशक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री श्याम प्रसाद पटेल वन तथा वातावरण मंत्री शंकर प्रसाद चौधरी तथा संघ तथा प्रदेशक उच्च सुरक्षा अधिकारी सबक सहभागिता रहल छल। पांच बुदाक मांग राखि कऽ तीन दिन सँ कैलालिक धनगढ़ी स्थित कृष्ण मंदिरक धर्मशाला में अनशन रहैत आयल डॉक्टर प्राध्यापक गोविंद केसी के अस्पताल भर्ना कयल गेल अछि। हुनक स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनित गेलाक बाद आइ धनगढ़ी उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित कृष्ण मंदिर धर्मशाला सँ सेती प्रादेशिक अस्पतालक सघन उपचार कक्ष आईसीयू में भर्ती कयल अस्पताल प्रमुख डॉक्टर हेमराज पांडे जानकारी देलनि। लगातार भोजन नहि फलाक बाद खून में ग्लूकोजक मात्रा घटबाक संगे थप समस्या अयलाक बाद प्रशासन संघक समन में अस्पताल भर्ना कयल ओ बतौलनि। एहि बीच स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मंत्री निशा मेहता डॉक्टर केसीक उपचार व्यवस्था संबंध में टेलीफोन सँ अभिरुचि ओ लेलनि। डॉक्टर पांडे के अनुसार मंत्री मेहता हुनका संग टेलीफोन कऽ उपचारक प्रभावकारी व्यवस्थापन आ आवश्यक समन्वय करबाक लेल निर्देशन देलनि अछि। मध्य प्रदेशक सभामुख राम आशीष यादव समाज में रक्तदानक संस्कार विकास करब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। श्रीहरि मानव कल्याण मंच द्वारा आई जनकपुर धाम में आयोजित रक्तदान शिविर के उद्घाटन करैत सभामुख यादव रक्तदान सँ पैघ मानव सेवा दोसर नहि भेलाक कारणे समाज में रक्तदानक संस्कार विकास करब आवश्यक रहल ओ
उल्लेख कयलनि। मंचक अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठक अध्यक्षता में आयोजित रक्तदान शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा केंद्रक प्रमुख डॉक्टर महारुद्र ठाकुर, नागरिक अभियंता सुरेश प्रसाद रोहिता, जनकपुरधाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 वार्डाध्यक्ष रामचंद्र साह सहित उपस्थिति रहल छल। रक्तदान शिविर मार्फत सुलंग होबयवला आ संकलन होबयवला खून रक्त संचार केंद्र के हस्तांतरण कयल जेबाक मंचक अध्यक्ष श्रेष्ठ बतौलनि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा संसदीय दल रोहतहट निर्वाचन क्षेत्र में 400 निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पौड़ेल ऊपर काला मसी प्रहार का भेल दुर्व्यवहार के घटना प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भेल जनौलक अछि। दलक मुख्य सचेतक कविन्द्र बुरला कोटी द्वारा आई जारी विज्ञप्ति में एहि साउन 7 गते जनता संघक भेंटघाट कार्यक्रम में संपन्न का वापस हेबाक क्रम में सांसद पौड़ेल ऊपर भेल एहि घटना के घोर भर्त्सना कयल गेल अछि। विज्ञप्ति में लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति आ विरोध व्यक्त केनिहार अधिकार सुरक्षित रहलाक बावजूदो जनप्रतिनिधि ऊपर होबय वाला हिंसा दुर्व्यवहार व अपमानजनक व्यवहार कोनो लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार नहीं होबाक बात उल्लेख कयल गेल अछि। रासपा घटनाक निष्पक्ष अनुसंधान के संलग्न व्यक्ति ऊपर कानून अनुसार कड़ा कार्यवाही करबाक लेल घटनाक सत्य तथ्य सार्वजनिक करबाक लेल तथा भविष्य में एहन घटना नहीं दोहराबाक लेल जनप्रतिनिधि संघक सुरक्षा सुनिश्चित करबाक लेल नेपाल सरकार आ संबंधित निकाय सँ मांग कयलक अछि। संसदीय दल लोकतांत्रिक मूल्य विधिक शासन अहिंसात्मक राजनीतिक अभ्यास आ सभ्य समाज निर्माण प्रति स्वयं सदैव प्रतिबद्ध रहबाक स्पष्ट कयलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित जन लोकपाल आयोग आर्थिक वर्ष 2082-83 में 15 मुद्दा फैसला कलक अछि। स्थापना काल सँ न्यून जनशक्ति भौतिक संरचनाक अभाव सहित समस्या भोगैत आयल आयोग आर्थिक वर्ष 2082-83 में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार संबंधी 51 उजुरी दर्ता भेला पर 15 के फैसला कलक अछि। आयोगक सूचना अधिकारी प्रसन्न राजकर्ण के अनुसार एहिठाम दर्ता भेल उजुरी सभक अध्ययन आ छानबीन कऽ 15 के फैसला कऽ मुद्दा दर्ताक लेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग केंद्रीय कार्यालय ठंगाल काठमांडू पठाओल गेल अछि। अन्य उजुरी ऊपर छानबीन भऽ रहल ओ बतौलनि। आयोग मे गत आर्थिक वर्ष 2081-82 में भ्रष्टाचार अनियमितता संबंधी 56 उजुरी दर्ता भेला पर 10 फैसला कऽ मुद्दा दर्ताक लेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग केंद्रीय कार्यालय ठंगाल काठमांडू पठाओल गेल छल। आयोग में सबसे अधिक स्थानीयता आ प्रदेश सरकारक निकाय सब में भ्रष्टाचार अवैध संपत्ति आर्जन प्रशासनिक अनियमितता संबंधी उजुरी आयल सूचना अधिकारी कर्ण के कथन रहल अछि। हुनक अनुसार ऑनलाइन मार्फत सेहो आयोग में उजुरी दर्ता होइत गेल अछि। गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री कयल आरोप में मध्य प्रदेशक 22 उद्योगी व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय आर्थिक वर्ष 2082-83 में संकलन का परीक्षण कयल खाद्य नमूना कैफियत देखल गेलाक बाद संबंधित जिला अदालत तथा जिला प्रशासन कार्यालय में खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरहीन 2081 अनुसार मुद्दा दायर कयल जनौलक अछि। कार्यालय प्रमुख विमल कुमार दाहाल के अनुसार 12 आ परसाक 51 महतरीक 7 सरलाही आरोहटक 3 तथा धनसाक 1 उद्योगी व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल अछि। हुनका अनुसार सप्तरी आ सिराहाक 3 तथा धनसाक 2 मिलाकर 5 उद्योगी व्यवसायी विरुद्ध खाद्य स्वच्छता कायम नहि कयल तथा खाद्य पदार्थ में मिसावट कयल आरोप में मुद्दा दर्ता करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल अछि। अनुगमन के क्रम में संकलित नमूनाक परीक्षण सँ स्वास्थ्य के लेल हानिकारक मिसावट कयल अवधि गुजरि चुकल खाद्य वस्तु बिक्री कयल तथा गुणस्तर मापदंड उल्लंघन भेल पौलाक बाद कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया आगू बढ़ाओल प्रमुख दाहाल बतौलनि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग टोली घूस लेल गेल बापत रकम सहित भूमिगत जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय करमैया सरलाहीक प्रमुख आ मैकेनिकल अधिकृत के पकड़लक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीवास से खटल टोली घूसक रकम सहित कार्यालय प्रमुख अनुपमा ढकाल आ मैकेनिकल
अधिकृत तुलाकांत चौधरी के पकड़लक अछि। आयोग बर्दिवासक सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेल के अनुसार सेवाग्राही से घूस लेल गेल सूचना के आधार पर सरलाहिक बागमती नगर पालिका वार्ड नंबर 12 स्थित रामकाजी थापाक घर में निचका तल्ला में रहल डिवीजन प्रमुखक निवास में छापा मारित काल ढकाल बैसल सोफा में सेवाग्राही से लेल 7,50,000 टका रकम बरामद भेल अछि। खान तलाशी के क्रम में स्रोत नहीं खुलल थप 71,115 टका नगद सहित बरामद भेल सूचना अधिकारी पोखरेल बतौलनि। विभिन्न जल उपभोक्ता समिति सँ बोरिंग तथा मोटर जलान के काज सम्पन्न भेलाक बाद भुगतानी करबाक लेल प्रमुख ढकाल मैकेनिकल अधिकृत चौधरी मार्फत घूस मांगल कहकर उजूरी के आधार पर छापा मारल गेल हुनक कथन अछि। पकड़ल गेल ढकाल आ चौधरी पर थप अनुसंधान भ रहल ओ जानकारी देलनि। दुग्ध उत्पादन करवला किसान के सहज बाजार समय में भुगतानी तथा पशुपालन से संबंधित आवश्यक सेवा उपलब्ध करबाक उद्देश्यक संग श्री परोपकार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड बारा के बेलवा बाजार सफी आ टाडिया बस्ती में दूध संकलन शाखा विस्तार कलक। रेडियो नेपाल से सुनल मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार में साझेदारी को लेकर नेकपा एमाले और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ 3 सूत्रीय समझौता। समझौते के अनुसार कोशी, बागमती और लुम्बिनी प्रदेश सरकार का नेतृत्व एमाले करेगी, जबकि कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार का नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री यमलाल कड़ेल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। रोलपा जिले की सुनछहरी गांवपालिका के दवांग लेक क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की हुई मृत्यु और प्रश्न पत्र लीक के विरोध में देशव्यापी आंदोलन तेज होने के बाद भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के बीच प्रदेश सभाओं में सहयोग तथा संयुक्त सरकार गठन के लिए 3 सूत्रीय समझौता हुआ है। दोनों दलों के बीच हुए समझौते के अनुसार संयुक्त सरकार में कोशी, बागमती और लुम्बिनी प्रदेश का नेतृत्व एमाले करेगी, जबकि कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश का नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा करेगी। समझौता पत्र पर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेकपा के संयोजक पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने हस्ताक्षर किए। नेकपा के संयोजक प्रचंड के निजी सचिव गोविंद आचार्य के अनुसार मध्येश और गंडकी प्रदेश में सरकार गठन के संबंध में प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य राजनीतिक दलों से भी परामर्श कर सरकार के नेतृत्व और उसमें सहभागिता का स्वरूप तय करने पर सहमति बनी है। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री यमलाल कड़ेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। प्रदेश सभा की आज की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफे देने की घोषणा की। नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ने गत 32 आषाढ को मुख्यमंत्री कड़ेल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ज कराया था। प्रदेश सभा की कार्यसूची के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होनी थी। विश्वास मत लेने की संभावना न रहने पर मुख्यमंत्री कड़ेल ने पद से इस्तीफा देने का निर्णय किया। गत 31 आषाढ को सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस के 4 मंत्रियों ने कर्णाली प्रदेश सरकार से सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। रोलपा जिले की सुनछहरी गांवपालिका 1 के सेरम स्थित दवांग लेक क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से मवेशी चरा रही 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। जिला पुलिस कार्यालय रोलपा के अनुसार आज दोपहर करीब 1 बजे दवांग लेक में गाय बकरियां चरा रही महिलाओं पर अचानक ऊपर से बड़ा भूस्खलन आ गिरा, जिसे वे मलबे में दब गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भूस्खलन में कुछ पशुधन भी दब गए। जिला पुलिस कार्यालय रोलपा के अनुसार मरने वालों में 51 वर्षीय असौजी घरती मगर और 36 वर्षीय अमरा घरती मगर शामिल है। मुगू जिले की मुगुम करमारोंग गांवपालिका 5 के पुलू बाजार में एक घर के ऊपर चट्टानों सहित भूस्खलन होने से 3 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार भूस्खलन में दबे रमेश बड़वाल को उपचार के लिए पुलू स्वास्थ्य चौकी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अनशन पर बैठे चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी के साथ वार्ता की तैयारी की गई है। वार्ता के लिए शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय के सचिव चूड़ामणि पौडेल आज धनगढ़ी पहुंचे हैं। सचिव पौडेल डॉक्टर केसी से संवाद कर उनके द्वारा उठाई गई मांगों पर चर्चा करेंगे। इसी बीच 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से कैलाली के धनगढ़ी स्थित कृष्ण मंदिर की धर्मशाला में अनशन पर बैठे प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर होने के बाद आज दोपहर उन्हें सिटी प्रादेशिक अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया। ये जानकारी अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर हेमराज पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि लगातार भोजन न करने के कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो गया है और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन के समन्वय से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने टेलीफोन के माध्यम से डॉक्टर केसी के उपचार की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उपचार में किसी प्रकार की भी कमी न होने देने और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने का भी निर्देश किया। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा है कि अमूर्त सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 नेपाल की अमूर्त सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण, संवर्धन, विकास और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण के लिए कानूनी आधार प्रदान करेगा। आज छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठी द्वारा काठमांडू में आयोजित 44वें छिन्नलता गीत पुरस्कार समर्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों की मौलिक परंपराओं, ज्ञान, कौशल, कला तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण, अभिलेखीकरण और संवर्धन किया जाएगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की 10 स्थानीय निकायों में कृषि मॉडल एकीकृत कार्यक्रम लागू किया जाएगा। जनकपुर में संघ प्रदेश समन्वय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि किसानों के खेत तक सीधे सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की 10 स्थानीय निकायों को मॉडल कृषि कार्यक्रम के लिए चुना गया है। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव ने संघीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। वैक्सीन के लिए ग्लोबल अलायंस गावी ने नेपाल से 3,08,271 अमेरिकी डॉलर की राशि वापस न लेने का निर्णय किया है। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार गावी ने नेपाल को भेजे गए पत्र में बताया है कि ये निर्णय विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठक, उसके बाद हुए पत्राचार तथा नेपाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर किया गया है। विदेश में आकर्षक वेतन वाली नौकरी का झांसा देकर न्यूजीलैंड और पुर्तगाल भेजने के नाम पर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार काठमांडो महानगर पालिका वार्ड नंबर 12 बूढ़ा नीलकंठ में रहने वाले तथा उखलनुंगा निवासी 29 वर्षीय सुरेश घिमिरे ने एक पीड़ित से पुर्तगाल भेजने का झांसा देकर 18 लाख नेपाली रुपए ठगी की। वहीं काठमांडो के तारकेश्वर नगर पालिका 10 में रहने वाले तथा देही निवासी 51 वर्षीय राजकुमार भंडारी ने न्यूजीलैंड भेजने का झांसा देकर 2 पीड़ितों से कुल 3 लाख नेपाली रुपए लेकर संपर्क तोड़ दिया। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आवश्यक जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें वैदेशिक रोजगार विभाग तहसील काठमांडू भेज दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी व्यापक छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने त्यागपत्र और सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि उन्होंने छात्रों के हितों, राष्ट्रीय एकता और मौजूदा स्थिति का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न होने देने के उद्देश्य से अपने पद से इस्तीफा दिया है। पिछले कई सप्ताह से देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों और युवा संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे थे। आंदोलन की मुख्य मांगों में परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्रश्न पत्र लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग शामिल थी। नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने व्यापक असंतोष दिखाया था। इसी बीच सभी मांगे पूरी होने के बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार में साझेदारी को लेकर नेकपा एमाले और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ 3 सूत्रीय समझौता। समझौते के अनुसार कोशी, बागमती और लुम्बिनी प्रदेश सरकार का नेतृत्व एमाले करेगी, जबकि कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार का नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री यमलाल कड़ेल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। रोलपा जिले की सुनछहरी गांव पालिका के दवांग लेक क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की हुई मौत और प्रश्न पत्र लीक के विरोध में देशव्यापी आंदोलन तेज होने के बाद भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: फोर जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
3: अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज, गतिशील मानव जीवन, कर्मशील सारा संसारका नेपाल र नेपाली मन,
4: दूर सुदूर क्षितिजका नेपाली अनुभव शब्द चित्रमा कोर्दै स्वदेशको सम्झना र परदेशको अनुभव सुन्ने सुनाउने एउटा चौतारी कार्यक्रम घर देश परदेश। कार्यक्रम घर देश परदेशमा स्वागत छ। म प्रस्तुता हेमन्त उप्रेती। विश्वव्यापीकरणसँगै यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले अझ साँगुरो हुँदै गरेको आजको संसारमा रोजगार, स्वरोजगार, वृत्ति विकास, शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयन, तिनको प्रयोग उपयोग र सुविधामय जीवनको आकांक्षामा मानिस संसारभर फैलिँदो छ। नेपालीहरू मात्र यसमा अपवाद छैनन्। कर्मक्षेत्रमा जहाँ जहाँ रहे पनि स्वदेश र जन्मभूमिप्रति सदा कृतज्ञ रहने नेपाली मनहरूका स्वदेश विदेशका जीवन अनुभवहरू खोतल्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम घर देश परदेश। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक शनिबार राति 10 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ। साथै रेडियो नेपाल .com र रेडियो नेपाल मोबाइल एपमा पनि यो कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ शेखर ढुङ्गेल। भक्तपुर कटुन्जेमा जन्मी हुर्की शिक्षक र विभिन्न सरकारी संस्थामा जागिर हुँदै करिब 30 वर्ष अघि अमेरिका पुग्नुभएका ढुङ्गेल केही समय जापानमा व्यावसायिकतामा रहनुभयो। 4 दशक भन्दा अघिदेखि नै गीत कवितामा स्वतस्फूर्त कलम चलाउन थाल्नुभएका ढुङ्गेलका शेखरका सय कविता, कहाँ छ मेरो देश, क्षितिज पारीका सपनाहरू, अ ब्युटिफुल जर्नी अफ स्ट्रगल, माटोको सुगन्ध, 100 रुपियाँको नोट र भैरव रिसाल लगायत 10 पुस्तकाकार कृतिहरू प्रकाशित छन्। 2063 साल ताकादेखि नै गीती अल्बम आकांक्षा, सम्झना र कुनै दिन प्रकाशन गर्नुभएका ढुङ्गेल गीतकारका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। जहाजले यो धरतीको जमिन छोड्ने बित्तिकै नेपालीका आँखाबाट टपक्क झरेका आँसुले मन विरगिएको अनुभूति लेख्नुहुने ढुङ्गेल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, साहित्यिक पत्रकार संघ, गीतकार संघ नेपाल, नेपाल अमेरिका गीतकार संघमा संलग्न हुनुहुन्छ। साहित्यिक पत्रकार संघले प्रदान गर्ने व्यथित काव्य पुरस्कारबाट पुरस्कृत सम्मानित ढुङ्गेल स्वदेशका हरेक जिल्ला घुम्न मन पराउनुहुन्छ र अब आय आर्जनमा भन्दा पनि अबको जीवनमा स्वदेशमा रमाउँदै अध्ययन, भ्रमण र सेवातर्फ आफ्नो रुचि गएको बताउनुहुन्छ। त आदरणीय श्रोता, आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौं भक्तपुरमा जन्मी हुर्की विगत 20 वर्ष अघिदेखि सपरिवार क्यालिफोर्निया अमेरिकामा रहनुहुने साहित्यकार, लेखक र गीतकारका रूपमा सुपरिचित शेखर ढुङ्गेलसँगको कुराकानी। उहाँ स्वदेश आउनुभएका बेला यो कुराकानी गरिएको हो। एकैछिन एउटा सङ्गीतबाट अघि बढौँ, त्यसबीच कुराकानी जोड्छौँ।